वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो NA सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूँ आपके साथ, आपका और मेरा साथ है एक बजे तक, और एक बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी है। इस हल्ले गुल्ले में शामिल आराम के सीजन में उनको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो चौसा और अनवर डॉल ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो आता भी बहुत कम मुद्दत के लिए और उसके साथ साथ

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कह सकते हो एन ए सुनियो। म्यूजिक ट्विस्टर में मैं हूं आपके साथ, आपका और